0: इसमें क्यों रोती? ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: अच्छा अच्छा बोलो बोलो प्यार है, मऊ चांदी आला करिश्मा कपूर, अच्छा ओ गंदा आला शाहरुख खान, अच्छा अच्छा।
0: और हिंदी कविता
2: डगर है सारे सोना सोना सोना मंडल का।